0: कारण हरेक प्राध्यापक द्वारा अध्यापन कराइने हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस विकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एचएस भेटेरिनरी डाक्टरमा भर्ना खुल्यो। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विकास कीर्तिपुर काठमाडौँ फोन 01-590-180-89 मोबाइल 97-072-540-89
1: अन्य घटने सामान घर लिया पानी लगे बेसर को पानी लग।

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु कुंबू

खेल खबर राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट टोली को कप्तान में संदीप लमिछा नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ के रोहित पौडेल हटाउँदै संदीप

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: काठमाडौँ एफएम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: 才华之旅，索路 FM 出发了。
1: सोलु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान।
2: Sound check. Sonu FM is studio time.
3: It's 1 p.m. दिउँसोको 1 बजे।
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु।
4: वन जंगल को सीमा घर आंगन पर मिल भई होशियारी अपनाउनु जोखिम टार्ने भई वारिपारी झाड़ी बुटी घास रोप्नु साँझ पर्दा घर छोड़ी गाउँ घुम्न जानु हुन्न बाघ भालु बैरा हात्ती चितुन पसेपछि धन जनको क्षति हुन्छ चुपचाप बसेपछि

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू।

0: Ohio Rádio Solo é Fernanda.
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Solo FM studio time.
3: It's 6 PM. Saanjh ko 6 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्कुम नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू।

0: AWR नेपाल नेशनल जो मार्गदर्शन रेडियो ला प्रसिद्धले जय मसीह
1: त्यता कि तमाम सो यसु भोगे कानी त्यता क्यासी जीवा खुन्नी मुन दी तेरी जीवा वासुनन चो यसुला ओरे की सेम दिन्सी ओरे जीवा अल्ला सेम ना कश्ये किन्नो यो तेरी ना दुजिचे लासे तमायरी दी कौनजे जिसुन रिंदु तेरी ना रिंदु मिलिंदु तेरी ना चो यसु की तेरी उंगुला लाका चामुरं वशे किसी तमा चो कौनजे ला तिदांगो जोरे की खोला चुवांगो जो जी दासने बाना जो तेरी ना तुझे ची मासो जन्मसी पसंद ले।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start business.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुन्द नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: गोल्ड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
0: इस 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दूध कुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
2: प्रिय श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्

0: और प्रिंट निजतर को रकम सवारी साधन को नंबर एक सम्बन्धी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपो सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पर्ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेन का संबंधित यातायात कार्यालय में गए कर प्रिंट मांग बैंक भोचर करना अगि सवारी कर तथा वस्तु एक तथा कर बुझाए पी प्राप्त हुए बीमा आपू बुझाए कर को रकम आपू सवारी नंबर एक्टिव करना होना इस सूचना मार्फत अनुरोध कर
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय